पौड़ी प्रयाम साधना जिहा कल करना चाहिए होना पचारी है ऐसी कला ना खेडिया जितने हावी है पर चल जी।

और सबको आके अपना जिसमें सुनिए पिता आपको अपना पहले कसम दिए है जा रहा ना है तक का इंतकाल कर दिए मंदा किसने आखे पर खड़े हो पूजिए

पौड़ी चक लगे चा फ्रिज चले तो सुमाए पर मैं तो सोनी हूँ जो पेटो ना खाए तस मैं करे बराबरी फिर ग्यार तंदर पाए वजन गवाह रगला मोहन पान खाए जिस दाद ता खावना तिस के ये शाबाश नान हुकम ना चले नाल कसलो।

आनंद सुनो बट भागी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया फिर सकल सूर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साजन पे सर से पूरे गुरु ते जानी सुनते।

दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय। दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे वार दा ध्यान धर के बोलो जी।

आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशियारे आयत।

जी महाराज आप जी दे हजूर अरदास आप जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे दीवान सजे सजे दीवाना अंदर इलाही बाणी दे शब्द कीर्तन छे पौड़ियाँ आनंद साहिब बाणी जी की अरदास अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट बाणी दे जाप करन दे बल उद्दम बख्शिश करने पढ़ी हुई बाणी दा भाव समूह संगतां दे हिरदे विच वसाउणा आप जी दे दराई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनिया सभना दा चलिया होया कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दे दर ते कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे दर प्रवान होया प्रसाद समूह संगतां विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी पावन इलाही फरमान बख्श के समूह संगतां नूं निहाल करो हुक्म ते चलन दी समत बख्शिश करनी सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहेवंद।

अनेक न जपन कर्तव्य जिया अंदर जियो सुख जाला सुख तेरे बस तेरा कृपल तेरे कर आनंद बधाई तुझ कर मान मत जपना आप जर

पाणी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबी अले, मान एक ना चेतस मूड़ मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जैना तू नाही वीसरया, आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानक दे होरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भाजे केवल नाम, स्रंग जाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जाब ताब संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण बरे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सवै तुम काबहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब रन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चहो सुगम दे पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन शत्र हमारे मारिए, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करिहो रक्षा, राख लियो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंद जक्षण उपजायो, आदि अंत एक कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सुवारी, सिवकन को सिव गुण सुख दियो, शत्रण को बल मोहबद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के बड़ बड़ की जाने, जाब उदकर्ख करा करतारा,
प्रजातर्त तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आव आपणी बूझे उचारे, तुम सब हीते रहित नर आलम, जानत वेद वेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़े उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहण अनुमानत, महामूड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह विभ, आव आपणी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबारे सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आसतो जे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को इक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहीं सब काला, दुष्टे अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो, ताके ताप तनक महे हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसते ताहें ओबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोखते रहा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आव हाथ दे लेहो उबारी, सर्वठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्वठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, सवैया पाए गहे जबते तुमरे, तबते कौ आंख तर नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सभाय, बहुभेद कहें हम एक न जान्यो, सिरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखाने दोहरा, सगल द्वार कौ छाड़ के गयो तोहारो द्वारे, बहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहारे, सगल द्वार कौ छाड़ के
गयो तोहारो द्वार, बहें गहे की लाज अस, गोविंदास तोहार। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया, शब्दो तां गावो हरी केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो, तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गलना समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाहा तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जैना भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनै वसया, जैना इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों, जिस दियाँ एह वड़ियाइया, कहे नानक सुनहो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को, से राम हर के लागे, कहे नानक तैं सुख होआ, तेत घर अनहद वाजे, आनंद सुनहो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनी, कहते पवित्र, सतगुर रहा भरहुरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा भर भूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो,
अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस अधारो, जेको खावे जेको पुंचे तिसका हुए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित राखो और तारो। तम संसार चरण लग तरिय सब

उपजे शब्दे मेल मिलाया बिन शब्दे सब जग बौरन्ना बिरथा जन्म गवाया दे है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख अगम है को कित बिद पाइए तिस रूप नारेक अदृष्ट को जन क्यों त्याइए ड्रंकार नरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइए जिस आप जाए आप सो हर मार्ग पाइए गुरपूरे वेखल्या गुर सेवा पाइए ड्रंकार नरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइए जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइए गुरपूरे वेखल वाहे जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पते परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जी हो के समर्थ सतगुरु जी दे पावन चरणा विच जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां सतगुरु महाराज जी दे पावन चरणा विच लग जान। आप जी रोजाना इस अस्थान

दर्शनु प्रति गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

संत टहल की बेला इहां काट तलवार लाहा अगै बसन सहेला यहद कटै दिन सुरै नारे मन गुर मिल का सवारे राम। ए संसार विकार संसे मैं त्रेहो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावै ए रस कथ कथा दिन जानी जाको आए सोई बिहाजू अर गुर ते मने वसेरा निज कर मैं।

जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमा।

तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुर प्रसादी कुबिरला छूटे। तिस जन को हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जान।

गुरमुख ब्रह्म विचारो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल साहिब जमाल साहिब बरकत सर्व कला भरपूर हाजर हजूर राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान बेअंत भगतान की टेक दसा पातशाहियां दी जागदी जोत ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जियां दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दी हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने साडे सभना दी झोली दे अंदर पावन हुक्म दी दात पाई है सो पावन हुक्म सो ही राग दे अंदर सोढ़ी सुल्तान चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जियां दा शब्द है जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे अंदर 735 ਅਤੇ 737 ਅੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੈਰਾ

का योगी सुन त्यावन जेते अलख न करता सुखम मूर्त नाम रंजन काया काय का सतिया मन संभोग उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे ससा चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बाबे का एक होंदा खाए चले था तिना पिका इका चल थल जिया पुरिया लोआ आकार आका ओए जे आखे सो तो हे जाने तिना पी तेरी सार नान पक्ता पुखसला सदना में था सदा आनंद रह दे राती गुणवंतिया पाछार महला पहला।